0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग मित्रांनो, तुम्ही ऐकताय आरजे अदनान सोबत एमजीएम 90.8 FM. आणि घड्याळात आता एक्झॅक्टली 7:12 ही वेळ झालेली आहे आणि आज आहे सोमवार, यानी की मंडे आ गया. और मंडे का नाम सुनते ही ना कुछ लोग अलार्म बंद कर देते हैं, कुछ लोग मूड. लेकिन याद रखो, मंडे वो दिन है जो डिसाइड करता है कि तुम हफ्ता कंट्रोल करोगे या हफ्ता तुम्हें कंट्रोल करेगा. अगर आज थोड़ा सा एफर्ट डाल दिया ना तो फ्राइडे का स्माइल ऑटोमेटिक आ ही जाता है मंडे के दिन. लाइफ में प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि रुक जाओ, प्रॉब्लम का मतलब होता है अपग्रेड होने का चांस होता है. आज का काम परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन स्टार्ट होना बहुत जरूरी है. क्योंकि जो लोग वेट करते रहते हैं राइट टाइम का, उनके हाथ में सिर्फ क्लॉक रह जाती है. तो दोस्तों, चाय उठाओ, कदम बढ़ाओ और खुद से एक ही प्रॉमिस करो, इस मंडे में अपने सपने से भागूंगा नहीं, उसकी तरफ एक कदम जरूर चलूंगा. हैव पावरफुल मंडे. और याद रखो, मंडे से विनर बनना शुरू होते हैं. सो मंडे को बोरियत नहीं, खूबसूरत तरीके से हम आज का दिन ये मनाएंगे और शो का आगाज करेंगे. स्टे ट्यून एंड गुड मॉर्निंग.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजी अब 90.8 एफएम।
1: एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कुछ जंगली कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए उनकी तरफ दौड़ रहे थे। अब जरा सोचिए, ज्यादातर लोग तो डर के मारे भाग खड़े होते हैं, लेकिन स्वामी जी वहीं रुक गए। उन्होंने भागना नहीं चुना बल्कि मुड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ उन कुत्तों की तरफ कदम बढ़ा लिए। और जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, कुत्ते डर गए और कुछ ही पलों में भाग खड़े हुए। दोस्तों, यही वो पल है जहाँ से सीख मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस चीज से तुम डरते हो उसी का सामना करो, डर अपने आप हार मान लेगा। हमारी जिंदगी के कुत्ते अलग होते हैं, कभी डर असफलता का, कभी लोगों की राय का, कभी मैं कर पाऊंगा या नहीं का। लेकिन याद रखिए, डर तब तक ताकतवर है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। जिस दिन आपने खुद को भरोसा करा दिया, उसी दिन डर पीछे हटने लगता है। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, भागना नहीं है, मुकाबला करना है, क्योंकि खुद पर विश्वास ही असली शक्ति है। और यही था स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बड़ा संदेश।
0: किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजी अब 90.8 एफएम।

0: जब तक हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तब तक चेहरे पर मुस्कान ओरिजिनल नहीं दिखेंगी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। सो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है अभी डॉक्टर मानसी करसगांवकर, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी एंड लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो मैम, मेरा सवाल आज आपसे ये है, अक्सर हम देखते हैं कोई अपने जान पहचान का हो, फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड हो जो इन सब चीजों से गुजर रहा हो, डिप्रेशन से वगैरह, तो उसको हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उस चीज से बाहर निकालने के?
1: जैसे सबसे पहले है कि कनेक्टिंग देम विद अ लाइसेंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। सबसे पहले तो हमें वही ढूंढना है कि जो प्रोफेशनली हेल्प कर सकते हैं उनको। सेकेंडली, एज अ फ्रेंड आप उनको बी अ गुड लिसनर लाइक वी डिस्कस्ड, उनकी दिक्कतें समझने की कोशिश कीजिए और तब तुरंत सजेशन मत दीजिए, बस सुन लीजिए। शायद उनको बस अपना मन हल्का करना हो, बोझ हल्का करना हो मन का, और यू कैन कन्विंस द पर्सन फॉर द ट्रीटमेंट। जैसे बहुत सारी थेरेपीज़ हैं और काफ़ी सारे लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं जो ये केटर कर रहे हैं, तो इन दिस केस जो थेरेपी होती है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू बिगिन विथ। तो दीज आर सम फ्यू थिंग्स यू कैन टेक केयर ऑफ।
0: तो मैम ने जो बातें बताई वो याद रखिएगा, उसको समझिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ वेल रखिएगा। बाकी तो जब तक आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल आएंगे तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा ही। सो आपके सवाल पूछिए हमें 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और मुस्कुराते रहिए एंड स्टे ट्यून।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और वक्त हो चुका है आज की फरमाइश का। सो आप बस अपनी फरमाइशें बताइए, मैं वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। सो आज गाने की फरमाइश आई है आशुतोष काळे की तरफ से इस गाने के लिए। नहीं।

वाह क्या बात है, क्या बेहतरीन गाने की फरमाइश की है आशुतोष जी ने कि मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं। चलिए फिर उनकी फरमाइश पर ये गाना एंजॉय करते हैं। बाय द वे दोस्तों, आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें आप बिंदास व्हाट्सएप कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर सारी फरमाइशें पूरी होती है। सो जल्दी कीजिएगा, मैं आपकी फरमाइश का इंतजार कर रहा हूँ। और सुनते हैं अभी अगला सुपरहिट गाना, स्टे ट्यून।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: Vai!
1: तो सिटी अपडेट में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आज का ये है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपने छत्रपति संभाजीनगर जिले में वोटर लिस्ट को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, तो बात कुछ ऐसी है कि स्पेशल रिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट में 3,61,000 से ज्यादा वोटर्स को नोटिस देने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। अब सवाल यह है कि इन वोटर्स को नोटिस क्यों आई है। इस वेरिफिकेशन में कुछ वोटर परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ वोटर्स की डेथ हो चुकी है या डुप्लीकेट एंट्रीज है, या कुछ वोटर्स का एड्रेस नहीं मिल रहा है या फिर एड्रेस इनकम्प्लीट है। तो इन कैटेगरी में जिन जिन के नाम आए हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए नोटिस दिया जाता है। अब तक ना तो 10,680 वोटर्स को नोटिस भेज दी गई है और बाकी वोटर्स को बिना तो धीरे धीरे नोटिस मिलने ही वाली है। लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है और जेन्युइनली एलिजिबल वोटर है आप, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। नोटिस को बस इग्नोर मत कीजिएगा। सुनवाई के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म नंबर 6 सबमिट करके आपका नाम वोटर लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे सिंपल बात पहले आप चेक कीजिएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और नोटिस आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वोट देने से पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम होना भी जरूरी है।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: दिल है

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।
2: महात्मा गांधींचे विचार तुमच्या अभिनयातून मांडण्याची सुवर्ण संधी। MGM विद्यापीठाच्या संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर आधारित पथनाट्य स्पर्धा। महाविद्यालयीन, शालेय व कोणत्याही संस्थेचे संघ सहभागी होऊ शकतात। संघात 6-15 कलाकार असावे। सादरीकरणाचा कालावधी 10-15 मिनिट। मोफत प्रवेश आणि हजारो रुपयांची रोख पारितोषिके जिंकण्याची संधी। स्पर्धा दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी MGM विद्यापीठामध्ये। संपर्क 9881214898 आणि 9075023520।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

गाने की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। लैला मजनू फिल्म का ये जो गाना है, इस गाने में एक लाइन है जिसमें दो जहां के बारे में कहा गया है, यानी कि ये एक दुनिया और फिर मरने के बाद जो होती है परलोक या जन्नत, वो एक दुनिया के बारे में, जहाँ पर लैला मजनू अब मर चुके हैं। जब मजनू इस दुनिया में था तब भी उसे लैला से खूबसूरत कोई नजर आई ही नहीं है, और जब वो मरने के बाद परलोक या जन्नत चला जाता है तो वहाँ पर तो परिया है, हूर है, लेकिन वहाँ पर भी ना तो उसे लैला से हसीन कोई नजर नहीं आती, इसलिए तो कहा है। जो सच्चा इश्क करता है, जो सच्चे इश्क में होता है ना, तो अपने महबूब से ज्यादा उसे कोई और खूबसूरत नजर ही नहीं आता, इसलिए कहा जाता है कि खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत में आने के बाद वो शख्स हमें खूबसूरत नजर आता है, और यही तो चीज ये गाना हमें पूरा समझाता है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

90.8 FM. किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो तो मेरी जान, मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331। सच के

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and Anandika morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। DM कीजिए का इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: साथ भाई साथ, भाई का साथ, जीवाची सफर, पता रानी चा देशा।

0: पिक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है NGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: तुझ्यापासून दूर गेल्यावरही तुझी आठवण प्रत्येक पावलावर जाणवते. तू सोबत नसताना प्रत्येक क्षणाची सावली मला त्याच वाटेवर बोलावते.
1: ये सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
2: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान.
1: ये है एनजीएम 90.8 FM.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: Adnasi Baat with RJ Adnan. Only on MGM 94.8 FM. Saath hai to baat hai.
1: मोहन और सीमा बचपन के दोस्त थे। दोनों हमेशा एक साथ खेलते थे, हर छोटी छोटी बात पर हंसी ठिठोली करते थे। एक दिन मोहन ने सीमा से कहा, क्या तुम कभी मुझे बिना जाने बिना पूछे अपना हाथ थाम पाओगी? सीमा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझसे हमेशा सच बोलोगे तो मुझे कोई शक नहीं होगा। वो दिन आया जब मोहन को पता चला कि उसे सीमा से प्यार हो गया है, लेकिन वो डरता था अपनी दोस्ती खोने से, जैसे आप लोग भी डरते हो ना आपकी दोस्ती खोने से। फिर एक शाम आई जब मोहन ने सीमा को गुलाब का फूल दे दिया और कहा, तुमसे ज़्यादा खास कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सीमा ने गुलाब का फूल लिया और बस इतना कहा, मुझे तुमसे कभी दूर नहीं होना। दोस्ती से शुरू हुआ प्यार अब दोनों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM साथ है।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: महात्मा गांधींचे विचार तुमच्या अभिनयातून मांडण्याची सुवर्ण संधी। MGM विद्यापीठाच्या संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर आधारित पथनाट्य स्पर्धा। महाविद्यालयीन, शालेय व कोणत्याही संस्थेचे संघ सहभागी होऊ शकतात। संघात 6 ते 15 कलाकार असावे। सादरीकरणाचा कालावधी 10 ते 15 मिनिट। मोफत प्रवेश आणि हजारो रुपयांची रोख पारितोषिके जिंकण्याची संधी। स्पर्धा दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी MGM विद्यापीठामध्ये। संपर्क 9881214898 आणि 9075023520।
1: डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

अलग अलग फ्रॉड्स के हमने नाम सुने हैं, लेकिन कभी आपने सेल्समैन वाला फ्रॉड सुना है क्या? देखो यार, मार्केट में साइबर फ्रॉड है, ओटीपी फ्रॉड है, ईमेल वाले फ्रॉड है, या किसी ऐप के जरिए होने वाले फ्रॉड है, लेकिन आजकल अपने शहर में हो रहा है सेल्समैन फ्रॉड। इसमें क्या होता है, एक सेल्समैन आपके घर पर आता है कंपनी का प्रोडक्ट लेकर, और आपको समझाता है कि हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है, आप लीजिएगा, आपको इसमें फायदा ही होगा। और जब आप मना करते हो लेने के लिए तो कहता है कि ठीक है, आप कुछ दिनों तक सोचिएगा इस बारे में कि हमारा नंबर है और आपका भी नंबर हमें दीजिएगा, अपडेट लेने के लिए हम आपको कॉल करेंगे कुछ दिनों के बाद। वो कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, और वहां पर ही भाई सबसे इंपॉर्टेंट गेम खेला जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम वो बंदे को नंबर दे देते हैं, हमें लगता है कि भाई सेल्समैन ही है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, आज नहीं कल या परसों हम सोचकर बताएंगे। फिर रजिस्टर करते हैं और जिस तरीके से फिर एक ओटीपी आता है और ओटीपी वो बंदा मांगता है और सीधा ओटीपी चला जाता है बैंक में, और उसके बाद जो होता है हम सभी को पता है, अपने बैंक से पूरा के पूरा पैसा खाली हो जाता है। तो ये एक फ्रॉड आजकल अपने शहर में बहुत बढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्समैन फ्रॉड। तो देखो, आपके घर पर बिना तो कोई सेल्समैन आए तो भाई देखिएगा, प्रोडक्ट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मत शेयर कीजिए। और स्पेशल अगर वो ओटीपी मांग रहा हो ना कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद, तो समझ जाएगा

0: पछताओगे, इसलिए बी सेफ बी केयरफुल, वरना एक ओटीपी से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, समझे?
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी

0: जहां देखो वहां पर बस हमें आज की डेट में फ्रॉड नजर आता है। एग्जाम फ्रॉड, खाने का फ्रॉड, पानी का फ्रॉड, पैसों का फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, सब जगह बस फ्रॉड फ्रॉड और फ्रॉड। और आजकल तो भाई रास्तों का भी फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड को लेकर हम सभी लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी हो चुका है। मार्केट में जितने मोबाइल लॉन्च नहीं होते उससे ज्यादा तो फ्रॉड आजकल लॉन्च हो रहे हैं, और वो भी साइबर फ्रॉड दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर ही रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि एक गलती हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली करवा सकती है, एक क्लिक से पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। और ऐसे केसेस ना तो अपने शहर में भी बहुत सारे हो गए हैं। पिछले 2-4 महीने से ना तकरीबन किसी के अकाउंट से 5 लाख, 30 लाख, 8 लाख ऐसे रुपए गायब हो गए। गायब मतलब क्या, एक क्लिक के ऊपर से पूरा पैसा खाली होता है। और अक्सर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अवेयरनेस के जरिए बताते रहते हैं कि यार भाई किसी को भी अपना OTP मत देना, अननोन कॉल पिक मत करना। और हाँ, वो एक मार्केट में चल रहा था फ्रॉड, ऑनलाइन जेल का समथिंग ऐसा नाम था उसका, जिसमें आपको वीडियो कॉल के जरिए कैद किया जाता है, वो टोटली फ्रॉड था। एंड अब ये फ्रॉड इतने बढ़ रहे हैं तो मार्केट में एक और फ्रॉड आ गया है, और ये अपने शहर छत्रपति संभाजीनगर में भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दैट्स कॉल्ड सेल्समैन फ्रॉड। अभी एग्जैक्टली सेल्समैन फ्रॉड क्या होता है और इसके शिकार भी कुछ लोग हो गए हैं, तो इसमें एक गलती बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और वो गलती है OTP वाली। और हालांकि ये सेल्समैन फ्रॉड क्या है, किस तरीके से हो रहा है बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ ही देर में। तब तक के लिए जरा आप भी सोचिएगा क्या ये एग्जैक्टली सेल्समैन फ्रॉड होता क्या है, मैं तो बताऊंगा, थोड़ा इंतजार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

साहिबान कहानी प्यार की किसी ने जान ली किसी ने जान

हमारे हेल्थ से जुड़ी ना तो एक ऐसी बात है जो कि सभी को पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। देखो यार, HPV वैक्सीन के बारे में कहीं ना कहीं तो हम सभी ने सुना होगा। अब एग्जैक्टली क्या है HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा, थोड़ा गलत भी होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट करके लीजिएगा। सो खैर, HPV वैक्सीन एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है और इसके कुछ टाइप्स आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे कैंसर को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ क्या है पता है कि HPV वैक्सीनेशन के थ्रू इसे प्रिवेंट करने में मदद मिल सकती है। जी हाँ, और ये जो HPV वैक्सीन है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अब कंपलसरी हो चुका है कि हर लेडीज ने वैक्सीन लेनी ही चाहिए। तो यार, HPV वैक्सीन क्या है, ये किसके लिए रिकमेंडेड है, वैक्सीन लेने के सही उम्र क्या है और इसको लेकर पेशेंट के माइंड में कौन कौन से डाउट और मिथ्स है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर के बाद डॉक्टर धनंजय घुगे सर, कैंसर सर्जन, मराठवाड़ा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो इनसे हम जानेंगे कि HPV वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है और तो सर के जरिए हम जानेंगे कि HPV वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, अगर आपके माइंड में इस वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हो के तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, सुनते सुनते हमारा इंटरव्यू। सो स्टे ट्यून ओनली ऑन MGM 90.8।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: महात्मा गांधींचे विचार तुमच्या अभिनयातून मांडण्याची सुवर्ण संधी। MGM विद्यापीठाच्या संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर आधारित पथनाट्य स्पर्धा। महाविद्यालयीन, शालेय व कोणत्याही संस्थेचे संघ सहभागी होऊ शकतात। संघात 6 ते 15 कलाकार असावे। सादरीकरणाचा कालावधी 10 ते 15 मिनिट। मोफत प्रवेश आणि हजारो रुपयांची रोख पारितोषिके जिंकण्याची संधी। स्पर्धा दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी MGM विद्यापीठामध्ये। संपर्क 9881214898 आणि 9075023520।
1: डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। लैला मजनू फिल्म का ये जो गाना है, इस गाने में एक लाइन है जिसमें दो जहां के बारे में कहा गया है, यानी कि ये एक दुनिया और फिर मरने के बाद जो होती है परलोक या जन्नत, वो एक दुनिया के बारे में, जहाँ पर लैला मजनू अब मर चुके हैं। जब मजनू इस दुनिया में था तब भी उसे लैला से खूबसूरत कोई नजर आई ही नहीं है, और जब वो मरने के बाद परलोक या जन्नत चला जाता है तो वहाँ पर तो परिया है, हूर है, लेकिन वहाँ पर बिना तो उसे लैला से हसीन कोई नजर नहीं आती, इसलिए तो कहा है। जो सच्चा इश्क करता है, जो सच्चे इश्क में होता है ना, तो अपने महबूब से ज्यादा उसे कोई और खूबसूरत नजर ही नहीं आता, इसलिए कहा जाता है कि खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत में आने के बाद वो शख्स हमें खूबसूरत नजर आता है, और यही तो चीज ये गाना हमें पूरा समझाता है।

0: सो सिटी अपडेट में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आज का ये है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपने छत्रपति संभाजीनगर जिले में वोटर लिस्ट को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, तो बात कुछ ऐसी है कि स्पेशल रिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट में 3,61,000 से ज्यादा वोटर्स को नोटिस देने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। अब सवाल यह है कि इन वोटर्स को नोटिस क्यों आई है। इस वेरिफिकेशन में कुछ वोटर परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ वोटर्स की डेथ हो चुकी है या डुप्लीकेट एंट्रीज है, या कुछ वोटर्स का एड्रेस नहीं मिल रहा है या फिर एड्रेस इनकम्प्लीट है। तो इन कैटेगरी में जिन जिन के नाम आए हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए नोटिस दिया जाता है। अब तक ना तो 10,680 वोटर्स को नोटिस भेज दी गई है और बाकी वोटर्स को बिना तो धीरे धीरे नोटिस मिलने ही वाली है। लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है और जेन्युइनली एलिजिबल वोटर है आप, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। नोटिस को बस इग्नोर मत कीजिएगा। सुनवाई के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म नंबर 6 सबमिट करके आपका नाम वोटर लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे सिंपल बात पहले आप चेक कीजिएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और नोटिस आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वोट देने से पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम होना भी जरूरी है।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एंड फाइव, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: MGM 90.8 FM।